0: पक्का नहीं मान रहा?
1: हाँ नहीं मान रहा, जो करना कर ले, घड़ी घड़ी ड्रामा करती है।
0: राजा ठीक है।